0: और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है, कहने लगे, अब्बा हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और अब हम अपने अहल आयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बारे शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है।
1: قال لن أرسله

0: और वो वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।
1: वो फिर

उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही उनकी तरफ से कह दो कि खुदा। फिर उनसे कहो कि तुमने खुदा को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। ये भी पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर है, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला उन लोगों ने जिनको खुदा का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने खुदा की सी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनको मखलूकात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि खुदा ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वो यकता और जबरदस्त है।

उसी ने आसमान से मे बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया, और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह खुदा हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है, सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह खुदा सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
2: सुनते रहिए
4: अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फान ने हाजिर है आपके साथ प्रोग्राम फैकल्टी आवर्स के साथ रेडियो एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया में कहते हैं हम आपको खुश आमदीद मेरा और आपके सदाओ समात का जो ये सिलसिला है ये एक घंटे पर मोहित होगा और गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह आज भी इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट सर अब्दुल रहमान जो कि लेक्चरर हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की बच्चों के फ्यूचर को लेके उनके कैरियर को लेके उनकी सब्जेक्ट

0: सिलेक्शंस को लेके, कि कुछ बच्चे, एक हमारे मुल्क में ट्रेंड चल पड़ता है कि अच्छा अब ये जो बीबीए का ट्रेंड चल गया तो हर बच्चा कहता है मैंने बीबीए में एडमिशन लेना है। कभी कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड चल जाता है तो हर बच्चा कहता है मैंने कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है, लेकिन वो रुझानात के पीछे तो भाग पड़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, और फैमिलीज भी ये कहती हैं कि इस चीज़ का क्योंकि स्कोप है लिहाजा आप इसी में आप एडमिशन लो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो बच्चे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो कुछ बच्चों का जो ज़हनी मिजाज होता है वो साइंटिफिक होता है, और कुछ बच्चों का जो ज़हनी मिजाज होता है वो सोशल साइंसेस के साथ एसोसिएट करता है। तो होता ये है फिर कि हम सोशल साइंसेस का अगर बंदा नेचुरल साइंसेस में आ जाएगा तो 2-4 सेमेस्टर्स ओके सोके वो कर तो लेता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम उनको ये होती है कि वो अपने सेमेस्टर्स को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा CGPA बड़ा कम है और इसकी बुनियाद पर हम आगे पढ़ाई भी जारी नहीं रख सकते, आपकी प्रॉब लग सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से उनको फिर शिफ्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जब स्टूडेंट एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे उनका CGPA भी अच्छा हो जाता है और उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो भी खुल के सामने आती हैं और उनको समझ आती है कि असल में ये मेरा एरिया था। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम का जो मतमय नज़र था हमारे पूरे प्रोग्राम का वो ये था कि हमने ये नहीं देखना कि ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट का स्कोप ज़्यादा है, डिमांड किस मार्केट की डोमेन के अंदर है। हमने ये देखना है कि हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे में बहसियत वालदैन, मैंने ये देखना है कि हमारे बच्चे की अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक ख़ास एबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ नवाजा हुआ है और वो कैपेबिलिटी है जो किसी दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है। एक छोटा सा वाक्या शेयर करके मैं अपने मेहमान जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ आऊँगा कि एक जेल के अंदर एक कैदी बंद था और वो 4-5 साल हो गए उसको जेल के अंदर, और एक दिन ऐसी ख़ारिश करते हुए उसने देखा कि उसके लिबास में कहीं कोई सख्त सी चीज़ मौजूद थी। उसने जब वो देखा, लिबास को फाड़ा तो वहाँ पे एक की मौजूद थी। उसने की को देखा, दरवाजे को देखा, जाके उसने दरवाजे पे की को लगाया और दरवाज़ा खुल गया। तो मतलब चाबी के साथ आप 3 साल जेल में अपने आप को कैद रखते हैं। तो ये वो जो चाबी होती है ना, वो आपकी कैपेबिलिटी होती है। कहते हैं कि हम बूढ़े जो हैं वो जल्दी हो जाते हैं, ज़हीन देर से होते हैं, ठीक है। ज़हानत का मतलब ये है कि हम अपने छुपी हुई उन खाबीदा सलाहियतों को खोज लें, जांच लें, परख लें कि जिनकी बुनियाद पर हम अपनी ज़िंदगी की जो रास्ते हैं उनका तायुन कर सकें। तो आज जी हमारे पास हमारे मेहमान, हमारे परमानेंट जो पैनलिस्ट हैं सर अब्दुलरहमान, इंटरनेशनल रिलेशन से इनका ताल्लुक है और गुज़िश्ता प्रोग्राम में इन्होंने तफसील के साथ अपना तारुफ भी दिया था। तो आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होगा कि हमारा अभी रिसेंटली एक स्टडी टूर गया है स्टूडेंट्स का जी इस्लामाबाद में, और वो फुली स्पॉन्सर्ड टूर होता है। कोई 20-25 स्टूडेंट्स जो हैं वो 3-4 दिन इस्लामाबाद में रहते हैं और अच्छी जगहों पे उनका क़याम होता है, अच्छी जगहों पे उनका ताम होता है, और साथ में वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके थिंक टैंक्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जो भी अदारे इंटरनेशनल रिलेशन की इंडस्ट्री कहला सकते हैं जहाँ पर कल को जाके उन्होंने सर्व करना है, वहाँ पर उनके विजिट्स करवाए जाते हैं और बच्चे जो हैं वहाँ पर जाके उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनके काम करने के तरीके को देखते हैं, और कल को जब वो उस जगह पे आएंगे, उस ऑफिस में जाके काम करेंगे तो उनको किस तरह का इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ेगा, तो उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और हमारे जो अभी नए एडमिशन्स हुए हैं, नई क्लासेस जो हैं वो भी जी, नया सेमेस्टर का आगाज़ हो चुका है और बच्चों में एक जोश है, एक खरोश है, और बच्चे जो हैं वो एक नई तवानाई के साथ दोबारा से क्लासेस के अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो मैं आता हूं जी सर अब्दुलरहमान की तरफ। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक
1: सर? थैंक यू सो मच आपने मुझे दोबारा आपने शो में बुलाया और दोबारा से हम एक बड़े अच्छे से एक टॉपिक के ऊपर आज बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आपने एक बड़ा ज़बरदस्त जामे किस्म का आपने इंट्रोडक्शन पेश किया। तो सर IR की जो फील्ड है ये एक बड़ी इसे कहना चाहिए कि एक वर्सेटाइल फील्ड है, और इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर तो बात होती है, इसमें डिफेंस की भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, इसमें जो मुल्कों के जो आपस के ताल्लुकात हैं इकोनॉमी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, और जो भी कोऑपरेशन होती है हम उसमें हम स्टूडेंट्स को सारा पढ़ाते हैं और गाइड करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि 21वीं सदी बहुत तेज़ी से चेंज होती जा रही है और इसकी डिमांड्स चेंज होती जा रही है। अगर आप देखें तो पूरा जो ग्लोबल लैंडस्केप है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, विद इन आवर्स चेंज हो रहा है। जैसे पूरी गवर्नमेंट्स अमेरिका की चेंज हुई हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में हलचल मच रही है। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको इस दुनिया के चलने का मकसद समझ नहीं आएगा, ये दुनिया काम कैसे करती है। तो ये एक सब्जेक्ट, डेफिनेटली एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है पूरी बाकी एकेडेमिक सब्जेक्ट में से। तो इसमें अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स और दुनिया के जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, पॉलिटिक्स के जो ट्रेंड्स हैं, डिफेंस के जो ट्रेंड्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, आप इस फील्ड में ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स और जो भी ग्लोबल और मुल्की मामलात चल रहे हैं, अगर आप उनके साथ कट ऑफ हो जाएंगे तो आप इस दुनिया की रेस में पीछे रह जाएंगे।
0: ये रहमान, जो आपने बात की है ना ग्लोबल ट्रेंड्स के चेंज होने की,
1: बिल्कुल
0: ये बड़ी अहम बात है। मतलब हमारे सामाइन के लिए और स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो इसको सुन रही है, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, देखें एक किताब है 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी, कि 21वीं सदी के 21 सबक। अब वो सबक हैं क्या कि आज जो बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं, कल को जब उन्होंने मार्केट में आना है तो 65% बच्चों को वो जॉब्स करना पड़ेंगे जो आज नहीं है। और आज जो बच्चे डिग्रीज कर रहे हैं, कल को जब ये मार्केट में जाएंगे 2 साल के बाद 4 साल के बाद, जो आज हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो उनको 20% वो जॉब्स करना पड़ेंगी जो इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि दुनिया इतनी रैपिडली ट्रांजिशन इसके अंदर आ रही है, स्पेशली जॉब मार्केट को लेकर, कि जितने हमारे सिलेबस है वो आउटडेटेड हो रहा है, आपके नॉर्म्स आउटडेटेड हो रहे हैं, आपके लॉज आउटडेटेड हो रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी का एक इम्पैक्ट है वो इतना स्पीडी है कि कोई भी मुआशरती मुआशी सियासी जो डोमेन है आपके मुआशरे की, उसको पकड़ नहीं पा रही है। ठीक है, अब उस लिहाज से हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे वालिदैन जो हैं उन्होंने और टीचर्स ने अपने आप को अडेप्टेबल करना है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे पहले कि हम इसको कंटिन्यू करें, हम लेते हैं जी एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी सलाहियतें स्टूडेंट्स में होनी चाहिए अगर वो आईआर में आना चाहते हैं तो, और जब वो आईआर में आ जाएंगे तो आईआर उनको किस तरह से वो रास्ता सुझाएगा जो उनके ख्वाबों की मंजिल की ताबीर तक लेके जाएगा। जी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फानी, एक वक्फे के बाद मिलते हैं, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की।

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक जी, प्रोग्राम फैकल्टी आवर्स के साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फानी दोबारा से आपके साथ। हम कलाम है रेडियो FM 92.6 UCP की दुनिया आप सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस का जो डिसिप्लिन है उसमें स्टूडेंट्स को क्यों आना चाहिए, और ये जो डिसिप्लिन है वो किस तरह से स्टूडेंट को उन रास्तों पर डाल देता है जो रास्ते उनकी ख्वाबों के मंजिलों की तरफ लेके जाते हैं। तो प्रोग्राम इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और ट्रेंड्स की। कहते हैं कि जो माजी का काला जादू था ना, वो आज की साइंस है। मतलब काले जादू में ये होता था कि मैं कहीं बैठा हुआ हूँ दुनिया के दूसरे कोने में, तो एक जादू से मैं उसको देख भी रहा हूँ और उससे बात भी कर रहा हूँ। और आज की साइंस हमें ये प्रूव कर रही है कि एक बंदा दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो तो वो उसको देख भी सकता है, उसको सुन भी सकता है। तो वो सारी की सारी जो बातें होती थी जिनका ताल्लुक मिथिकल थिंकिंग के साथ होता था, मिथ के साथ होता था और अफसानवी हमें लगती थी, साइंस ने वो सारी अफसानवी चीज़ों को हकीकत का रूप में धार दिया है। और हम देखते हैं कि आज साइंस सारा कुछ वो कर रही है जो माजी के अंदर जादू के साथ एसोसिएटेड होता था। तो टेक्नोलॉजी का किस हद तक किरदार है इस वक्त एजुकेशन के अंदर, रहमान मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और इस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्टेबिलिटी कितनी जरूरी है स्टूडेंट की, और क्या टीचर्स जो हैं वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट होने में, तो उनके लिए कितना जरूरी है कि वो भी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रही हैं उन एप्स को सीखें, उनको इस्तेमाल करें अपने एजुकेशन के अंदर और क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर।
2: सर ये आपने बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक, एवर लास्टिंग टॉपिक है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला टॉपिक है, और इसका मैं आपको एक बड़ा सादा सा एक फिलोसॉफिकल सा जवाब देता हूँ जिसके ऊपर हमेशा से जो टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं और फिलोसोफर्स हैं वो सोचते हैं, लिखते हैं, कि वो एक फ्रेज़ है कि डू वी डिज़ाइन द टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी डिज़ाइंस अस बैक। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोपोर्शनल रिलेशन है जो कि इंसानियत के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है, कि हम पहले एक टेक्नोलॉजी को इजाद करने में पूरी अपनी मेहनत लगाते हैं, जब वो इजाद हो जाती है फिर वो उस टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानियत के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इंसानी तारीख जो है वो इसी तरह इवॉल्व होती रही है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ देख लें, स्पेशली अगर हम जो ज़्यादा ह्यूमैनिटी के ऊपर जो जिसका इम्पैक्ट आता है वो जंग की टेक्नोलॉजी है। जितनी भी आज हम टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं वो किसी ना किसी जंगी महाज के लिए डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, वहाँ से फिर उसकी फिर सिविलियन एप्लीकेशंस को निकाला गया और फिर लोगों के लिए आम की, जैसे इंटरनेट है। इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो अमेरिका की गल्फ वॉर में 1991 के अंदर हुआ था, और वहाँ से फिर इसको ईजाद किया गया, वहाँ से इसको निकाला गया और आज हम सारे जो है मोबाइल में इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो एकेडेमिया में जो टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। आप अब जो टेक्नोलॉजी के जो इम्पैक्ट है आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। ठीक है, और अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ट्विटर एक्स जो हम यूज़ करते हैं, इसकी एक इंटरनेशनल ट्वीट जो होती है किसी भी एक प्रेसिडेंट की, वो आपकी पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर भारी पड़ जाती है। ठीक है, और वहाँ से लोग जो हैं वो अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज करते हैं या इफेक्ट करते हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है।
1: रहमान, ये जो एक अमूमन ये डिबेट, मुझे भी एक दो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जब बुलाया गया वर्कशॉप्स के अंदर, तो डिबेट का मतमय नज़र ये था, मौजू ये था कि जो टेक्नोलॉजी है ये बच्चों के लिए ज़रूरी है या टेक्नोलॉजी है ये बच्चों को एजुकेशन की जो अचीवमेंट्स हैं उनके अंदर ये एक बैरियर का रोल प्ले कर रही है। हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने मोबाइल को यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस के अंदर इस्तेमाल करने पे बैन कर दिया है, और भी दुनिया के अंदर कुछ ममालिक के हमारे पास ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे ये समझा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं और बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है उस पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अगर हम गूगल करें तो हमें इसके फायदे के ऊपर भी हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स मिल जाते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पे बच्चे मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनका IQ बहुत ज़्यादा होता है और वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, और बहुत सारे आर्टिकल्स हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नहीं नहीं ये नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द मोबाइल्स एंड, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो मेरी थिंकिंग है कि जो जेन ज़ी है इनके लिए मोबाइल इज़ नॉट अ डिवाइस, इट इज एन एनवायरमेंट फॉर देम, मतलब दे कांट इवन इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट मोबाइल. वो जब पैदा हुए थे उनके हाथ में मोबाइल था, और अगर हम उनको ये कहें कि देर वॉज अ टाइम जब मोबाइल नहीं होता था और हमने मोबाइल के बगैर रेडियो के बगैर भी वक्त देखा हुआ है, ठीक है, अगरचे आपको शायद ये लगे कि मैं बहुत पुराना हूँ जब रेडियो भी नहीं होता था और टीवी भी नहीं होता था, लेकिन क्योंकि ये ऐजाद तो 64 में हो गया ना टीवी, लेकिन घरों की जीनत जो है ये हम देखते हैं 90s के इरा में अंदर जाके लोगों ने इनको परचेज करना शुरू किया और फिर ये घर का मेंबर बन गया, ठीक है. तो आप क्या समझते हैं, आपका मैं पॉइंट भी जानना चाहूंगा कि जो क्लासेस के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, स्टूडेंट्स मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, आप उसको पॉजिटिवली देखते हैं या नेगेटिवली देखते हैं?
2: सर, क्लास एनवायरनमेंट में तो डेफिनेटली ये अट्रैक्शन है, क्योंकि क्लास का एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसका एक खास एकेडमिक ऑरा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने चीजें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखानी होती हैं, उसमें आपको ये वाकई ही डिस्ट्रैक्ट करता है. मैं एक्चुअली प्रोपोनेंट हूँ टेक्नोलॉजी के कंट्रोल्ड इस्तेमाल का. मुझे ये मेरी अभी तक की लर्निंग है कि टेक्नोलॉजी डिजाइन्स अस बैक. फर्स्ट वी ऑल एग्जर्ट ऑल आवर एफर्ट्स टू डिजाइन द टेक्नोलॉजी. हमने डिजाइन तो कर लिया है, अब जब टेक्नोलॉजी हमें डिजाइन बैक कर रही है तो हमारे जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स, हर किस्म की जो वैल्यूज है उसके अंदर चेंजेस आ रही है, ठीक है. अब जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप मस्जिद में जाएंगे, हम नमाज पढ़ते हैं, हमने अक्सर सबने ये चीज एक्सपीरियंस की हुई है कि नमाज के दौरान किसी का मोबाइल बजता है तो हम सब डिस्टर्ब होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: ठीक है. तो ये चीज हमने खुद अपने लिए पैरामीटर्स तय करने हैं कि किस जगह पे आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, किस जगह पे नहीं करना, ठीक है. एक जमाना था जब इमाम मस्जिद नमाज वैसे ही स्टार्ट कर देते थे, अब वो पहले ऐलान करते हैं कि अपने मोबाइल बंद कर लें, पर लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हम उस चीज से इतना, जैसे आपने कहा कि हम उसमें रह रहे होते हैं मोबाइल में, हम फिर भी भूल जाते हैं, ठीक है. तो ये हमारे एडिक्टिव पैटर्न्स की तरफ भी इशारा करता है कि क्या हम अपने आप को इतने ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उसके बगैर शायद हमारी जिंदगी ना गुजर सके, ठीक है. तो ये एडिक्टिव पैटर्न्स है, तो किसी भी चीज की जो एडिक्शन है उसको मद्देनजर रखना चाहिए कि हम किसी चीज के एडिक्ट ना हो. और उसके बाद मैं एक और चीज पे इशारा करूंगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी, क्योंकि इसने हमें बहुत सारी सहूलियात भी दी हैं, इससे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ भी सकती है और वो कम भी हो सकती है, ठीक है. अगर तो हम एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो जो इनपुट आपने टेक्नोलॉजी को देनी है इसने आपको उसमें हेल्प आउट करना है, ठीक है. और अगर आप इसकी डिपेंडेंसी के अंदर जा रहे हैं तो फिर आपकी जो मेंटल फैकल्टीज हैं, आपकी जो, आप जैसे हम छोटी सी कैलकुलेशन के लिए भी हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, ठीक है. हालांकि पुराने जो लोग होते थे वो उंगलियों पे ही काफी ज्यादा हिसाब कर लिया करते, ठीक है. तो अगर आप अपनी लाइफ में ये पैटर्न देखें कि कैसे हमारा जो दिमागी और इंटेलिजेंस का जो हमारा इन्हितात शुरू हुआ है, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल भी है.
1: रोल है, मतलब आप ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बट कंट्रोल्ड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी इजाजत होनी चाहिए. क्लासेस टीचर पढ़ा रहा है तो उस वक्त बच्चों को इंगेज नहीं होना चाहिए मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए, चाहे जाके उनकी असाइनमेंट या चीज को इनको रिसर्च करना पड़ रही है. जी, हम यहाँ पे एक और दूसरा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम दोबारा से डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पोलिटिकल साइंस के उन इनिशिएटिव के हवाले से बात करेंगे जो बच्चों की खाबीदा सलाहियतों को खोजने और उनको के इजहार का मौका किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो प्रोवाइड करता है. हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक, खुश आमदीद जी आया नू जी। हम दोबारा से आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम फैकल्टी आवर्स रेडियो एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया में। आप सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फानी और सर अब्दुल रहमान को, और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो जो भी अदारा होता है रहमान, अदारे को चलाने में लीडरशिप का बड़ा अहम किरदार होता है। और जो लीडर्स होते हैं, हर लीडर्स का एक अपना विजन होता है, एक अपनी पॉलिसी होती है, और उन पॉलिसीज को लेके जो अदारा है ना वो परवान चढ़ता है। अगरचे हम अमूमन ये सुनने में मिलता है कि जो किसी भी बंदे का जो खला है वो पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स किसी भी जगह के लिए नागुजीर नहीं है। वो आज है, कल नहीं भी है, तो उसकी जगह लेने के लिए हाँ परफॉर्मेंसेज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव असरात हो सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स किसी भी पोस्ट के लिए नागुजीर नहीं होता, इनएविटेबल नहीं होता है। उसको सब्स्टिट्यूट करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ले रखे हैं। हम जब बात करते हैं कि जैसे हम अभी स्टडी टूर की बात कर रहे थे कि एक हफ्ते के ऊपर मोहित एक स्टडी टूर हो, और इस्लामाबाद आपने जाके कयाम भी करना है, ताम भी करना है, और सुथरा ताम करना है, अच्छी अच्छी जगहों पे खाना खिलाया जाए और अच्छी अच्छी जगहों पे बच्चों को विजिट करवाया जाए, ठीक है, तो अच्छे खासे पैसे इसके लिए चाहिए हैं। जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो कभी भी इतनी इन्वेस्टमेंट बच्चों पे नहीं करता, और हमारी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों के जो एक्सपोजर है इंडस्ट्री को लेके उस पर बड़ा काम हो रहा है। और जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं जो नई लीडरशिप्स हमारे प्रोरेक्टर साहब जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिंकेजेस को लेकर वो बड़ी प्रायोरिटी के ऊपर उनका ये काम है कि बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं फौरन से उनको यहाँ पे तख्लीक, हमारा जैसे एक अदारा है वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अपने जो आइडियाज़ हैं कारोबार के वो लेके आते हैं, और तख्लीक उनको जो है ना वो फेवर करता है। तो आप क्या बताना पसंद करेंगे हमारे ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को कि जो स्टडी टूर है उसका एक तो फ़ायदा क्या हुआ बच्चों को, और हम इनको क्यों भेजते हैं, और इसके अलावा वॉल्टेयर सोसाइटी जो है उस हवाले से भी हमें बताया कि सोसाइटी का क्या काम है।
4: जी, जैसे आपने लीडरशिप की बात की, तो विदाउट लीडरशिप तो कोई भी काम नहीं हो पाता, ठीक है, नहीं लोगों को डायरेक्शन देने के लिए, उनको एक चैनलाइज करने के लिए, उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए आपको एक क्रिएटिव लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। और इसी जमन में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने रिसेंटली हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला है,
3: इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस,
4: बिल्कुल। और इसमें मैं बल्कि आपसे रहनुमाई चाहूंगा कि इसमें आप इस डिपार्टमेंट को कैसे एक नई रूप बख्शेंगे और आप इसमें कैसे नई चेंजेस लेके आएंगे।
3: फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी मुबारकबाद को मैं दिल की यथा गहराइयों से कबूल करता हूँ। और ये एक देखिए, मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी, जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतनी बड़ी जवाबदही आपसे होती है। तो कुदरत ने अगर मेरे सर पे ये सेहरा या ये दस्तार रखी है कि डिपार्टमेंट को हेड करने का या उसको इंचार्ज के तौर पर काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं सबसे पहले तो अपने डीन साहब फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब का जो विजन है, एक उनके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं मुआशरे के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उनको लेके वो बहुत अडेप्टेबल हैं, और वो बच्चों को जहां अपॉर्चुनिटीज फ्राहम करते हैं वहाँ पे बच्चों को टैलेंट के इजहार का मौका भी जो है वो फ्राहम करते हैं। आप देखें, डीन होते हुए सोसाइटीज को सुपरवाइज करना, ये एक शौक बताता है कितना उनको शौक है कि वो बच्चों को मैक्सिमम लेवल पर वो प्लेटफॉर्म मुहैया करें जो बच्चों के अंदर जो खाबीदा टैलेंट और सलाहियतें हैं उनको उजागर करने का मौका उनको मिल सके। और वो बहुत डे टू डे अपडेट्स लेते हैं कौन सी सोसाइटी क्या कर रही है, कौन कौन से बच्चे आगे आ रहे हैं, और उनके विजन में इंक्लूसिवनेस बहुत है, ठीक है, कि आप ये ना हो कि आप फेवरेटिज्म की बुनियाद पे एक दो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपने पहले सेमेस्टर से लेके आठवें सेमेस्टर तक उन्हीं बच्चों को वो जगह दी हुई है। वो फिर कहते हैं कि जो नए सेमेस्टर से बच्चे नया टैलेंट आ रहा है उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो और दूसरी बात, अब मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा सर अब्दुल वहीद खान, जो सर वहीद खान हमारे HOD डिपार्टमेंट प्रीवियस जो थे, उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे डिपार्टमेंट को चलाया और एक स्मूथ तरीके से, और उनके होते हुए जहां पहले सिर्फ बी बीएस यहाँ पे हो रहा था इंटरनेशनल रिलेशन, फिर पॉलिटिकल साइंस में उसको आगाज किया गया, फिर एमफिल का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं की एचओडीशिप के अंदर पीएचडी भी एचईसी की तरफ से हमारी रिकॉग्नाइज हो गई, और अब ये तीनों प्रोग्राम्स फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल जो है वो पेश कर रहा है कि बीएस की क्लासेस भी हो रही हैं, एमफिल आईआर की क्लासेस भी हो रही हैं, और पीएचडी आईआर की क्लासेस भी हो रही हैं। और तीसरी जगह पे बात आ जाती है कि मेरा वीएन क्या है, क्योंकि मेरा जो हम उस जनरेशन से हैं कि जो ना बहुत पुराने हैं ना जेन जी के अंदर फॉल करते हैं, जो भी 90s के अंदर पैदा होने वाले लोग हैं या 90s से कुछ पहले पैदा होने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने अपने टैलेंट की बुनियाद पर ज़िंदगी से लड़े हैं और आगे बढ़े हैं। और हमारी भी ये कोशिश होगी कि एक तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मीडिया के साथ रहा, एक अरसा मैंने फैकल्टी ऑफ मीडिया में सर्व किया है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी फैकल्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के साथ भी इंगेज करूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज ये फैकल्टी आवर प्रोग्राम में मैं खुद आके बैठा हुआ हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे तमाम जो टीचर्स हैं हर वीकली आकर वो अपना जो विजन है, जो उनका सब्जेक्ट की नेचर है, वो उनको रियल लाइफ के साथ रिलेट करके हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्यों स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस तरफ आना चाहिए। और देखिए इंटरनेशनल रिलेशन और मीडिया का चोली दामन का साथ है, इंटरनेशनल रिलेशन कुछ भी नहीं है विदाउट मीडिया, और मीडिया भी कुछ भी नहीं है विदाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वक्त आप CNN उठा लें, BBC उठा लें, CBC उठा लें, तो ये जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे चैनल्स चल ही इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से या पॉलिटिकल साइंस के ऊपर हैं। उनका 90% कंटेंट ही सियासत के ऊपर है, वो कौमी सियासत हो या बैन अल-अक़वामी सियासत हो, ठीक है। तो मेरी भी ये कोशिश होगी कि हमारी जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनका जो मीडिया का एक्सपोजर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। शुरू में रिलेक्टेंट होता है बंदा, थोड़ी सी माइक के साथ या कैमरे के साथ हमें हाँ माहंग होते हुए थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दो चार जैसे आपका पहला प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम में बड़ा फ़र्क है, इसी तरीके से जैसे हम प्रोग्राम्स करते जाएंगे इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, और बाकी फैकल्टी भी जो हमारी। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स को लेकर इंटर्नशिप और इंडस्ट्री के साथ जो लिंकेजेस हैं, क्योंकि मेरी अपनी इंडस्ट्रीज मीडिया के अंदर मेरा तकरीबन आना जाना डेली लगा रहता है, और मैं उनसे फिर इंटर्नशिप्स के हवाले से बात करता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को आप किस तरह से इंगेज कर सकेंगे। और तीसरा ये है कि जो रिसर्च को लेकर मैं खुद भी बच्चों के साथ मिलके मेरे गुज़िश्ता साल में कोई 4 रिसर्च आर्टिकल्स मेरे स्टूडेंट्स के साथ पब्लिश हुए हैं जो हमारे HSC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स के अंदर। तो मेरी ख्वाहिश भी ये होगी और कोशिश भी ये होगी कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हम रिसर्च रिपोर्ट्स बच्चों को करवाते हैं, मेहनत तो हम करवा ही रहे हैं, तो उनको इस लेवल की रिसर्च रिपोर्ट लिखवाई जाए कि उनको आप थोड़ी सी और मेहनत करके एक रिसर्च आर्टिकल की भी शेप दे सको और उनको पब्लिश करवा सको, ठीक है। तो ताकि रिसर्च के अंदर भी जहां बच्चों ने कल को जब बाहर जाना है या किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उनको इसका एक माइलेज मिलता है। और किसी यूनिवर्सिटी में अभी हमारा एमफिल का स्टूडेंट यहीं से अभी उन्होंने डिग्री की है और माशाल्लाह वो इस वक्त कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको जॉब ऑफर हो चुकी है और वहां पे जाके उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। और मतलब बात यह है कि बच्चे ये कहते हैं कि आईआर का स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि मेरी नज़र में कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट को मैं जानता हूं कि जिन्होंने अभी डिग्री मुकम्मल भी नहीं की आईआर की और उनको मार्केट में जॉब मिल गई है। एक बात स्टूडेंट्स ने समझनी है कि हमने उजलत में नहीं आना, और हर डिग्री का जो है ना एक कोई ना कोई स्कोप है और बहुत स्कोप है। बात यह है कि यू हैव टू बी द बेस्ट इन योर फील्ड, अपने सब्जेक्ट में आपको बेहतरीन होना है, टॉप पे नहीं होना, बेहतरीन होना है। जब बेहतरीन हो जाओगे ना तो आप जीना बजीना टॉप पे भी चले जाओगे, ठीक है। टॉप पे वो लोग भी चले जाते हैं जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन जो कैपेबल होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी कैपेबिलिटीज की बुनियाद पे क्योंकि बेस्ट होते हैं, तो वक्त उनको जरूर एक वक्त ऐसा आता है जब वो टॉप पे भी आते हैं और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी उनकी जो सोच होती है वो कारफरमा होती है। तो मेरा तो ये कुछ विजन है, तो हम इंशाल्लाह ताला कोई और प्रोग्राम भी इस पर करेंगे कि इनको हम करेंगे कैसे, ख्वाहिश तो ये है, तो इनको हम करेंगे कैसे। तो आप से भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से वॉल्टेयर सोसाइटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही है, और दुनिया भर से जो लोग हैं जिनका ताल्लुक आईआर से है, डिप्लोमेसी से है, वो उनको आप इनवाइट करते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, तो उस हवाले से ज़रा हमारे ऑडियंस को सेंसिटाइज कीजिएगा।
4: हाँ जी, अच्छा ये हमारा एक जैसे कि आपने बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, और इसके लिए मैं आपका और हमारे जो डीन साहब हैं डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने फैकल्टीज मेंबर्स को इतना लेवरेज और इतना ओपन स्पेस दिया है कि जिसमें हम अपने भी आइडियाज़ एग्जिबिट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को ग्रूम अप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है कि किसी भी बैकग्राउंड से सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो हमारी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हम उनकी जो मुलाकात है और एक जो हमारे जो फील्ड के जो टॉप के जो लोग होते हैं हम उनके साथ उनकी मुलाकात करवाते रहते हैं,
3: फॉर एग्जांपल
4: जिसके अंदर हम उनके लेक्चर्स कंडक्ट कराते हैं, स्टूडेंट्स उनके साथ वन टू वन इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ उनके लाइफ से सीखते हैं, उनके उनके नॉलेज से सीखते हैं।
3: जैसे अभी अमेरिका के जो एम्बेसडर थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर इन अमेरिका, वो पिछले दो हफ्ते पहले यहाँ पे आए हुए थे बच्चों के साथ, उन्होंने उसके हवाले से भी जरा
4: जी बिल्कुल उसके अंदर चूंकि उनकी एक अमेरिका में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली हुई है, तो हम ये चाह रहे थे कि उनको पाकिस्तान में जैसे ही वो लैंड करें तो यूसीपी में जरूर आए और हमारे स्टूडेंट्स को पाक यूएस जो रिलेशन है फॉरन रिलेशन है उसके ऊपर उनको फेस टू फेस बताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नोयत के हैं, वो कैसे चलते हैं और प्रैक्टिकलिटी और एकेडेमिया में हम उसको कैसे लिंक करते हैं
3: और थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस
4: है। जी बिल्कुल ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ग्लोबल ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं और ग्लोबल ट्रेंड्स की वजह से पॉलिटिक्स चेंज होती जा रही है और डेली बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं। तो आप को एक जो डिप्लोमेट है एम्बेसडर है एक स्टेट का, वो खुद अपने हालातों वाकयात से बता रहा है कि किस तरीके से मुल्की जो मामलात होते हैं अमेरिका के साथ हम डील करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इस एज में एक एम्बेसडर के साथ मिलना और उनकी पर्सनालिटी से सीखना, उनके नॉलेज से सीखना, फर्स्ट हैंड नॉलेज जब उनको दिया जाता है तो उनकी राइटिंग में उनके एग्जाम्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है और ये चीज़ शो करती है कि वो ग्रूम अप हो रहे हैं, उनका लेवल अप होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह हम पाकिस्तान के जो नामवर जो स्कॉलर्स हैं और एम्बेसडर्स हैं मिनिस्टर्स हैं उनको हम हमारी सोसाइटी वोल्टाइज सोसाइटी उसको बुलाती है, उनके लेक्चर्स होते हैं, स्टूडेंट उनके साथ वन टू वन कैंडिड इंटरेक्शन करते हैं जिससे उनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है और वो अपने कॉन्टेक्ट भी डेवलप करते हैं।
3: इसी से मैं बात को कनेक्ट करूंगा, जैसे वोल्टेयर सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही है, ऐसे जैसे मैंने कहा था डीन साहब जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ को लेकर संजीदा हैं, तो डिबेटिंग सोसाइटी का भी पैटर्न उन्होंने मुझे बनाया हुआ है। तो अब डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर भी अब हमारे जो डिबेटर हैं राजसमा न्यूज़ के अंदर यूसीपी के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे मुझे एज ए जज भी उन्होंने बुलाया हुआ था, पंजाबी टाकरा बेसिकली वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे बच्चे आ रहे हैं, कोई 5-6 बच्चों को मौका टीवी पे जाके, हमारी एक बच्ची मायदा है जो अभी एक टीवी न्यूज रमजान ट्रांसमिशन के अंदर उर्दू डेक्लेमेशन जो है उसमें उसने सेकंड पोजीशन हासिल की है, ठीक है। और बहुत सारे हमारे IAR के बच्चे, मेरा ख्याल है मीडिया से भी शायद ज्यादा बच्चे जो है रेडियो के अंदर और टीवी के अंदर, वो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ IAR और पोलिटिकल साइंस के साथ है। तो मतलब बच्चों के अंदर अमूमन हम ये क्लेम शिकायत करते हैं कि बच्चे जो हैं वो काम करना नहीं चाहते, मैं हमेशा इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं होता हूँ। अब बुनियादी तौर पर बच्चों में स्पार्क है, हमने उस वो जो राख ना उम्मीदी की राख है ना जिसमें उनकी मोटिवेशन दबी हुई है, हमने उसको राख को पीछे करना है ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपना काम जो है वो खुश असलूबी से आसर अंजाम दे सकें।
4: जी सर, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा इशारा दिया इस तरफ, बच्चों में स्पार्क है, इस एज में जितना उनमें टैलेंट है उसको शेप अप करने की जरूरत है। अब जैसे आपने वो डिबेट्स का बताया और सारा स्टूडेंट्स का बताया, अब उनमें वो डिबेटिंग का और जो आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करने का एक खास हुनर अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हुनर खास लोगों में होता है, इसी तरह मैंने मेरी लीडरशिप के अंदर मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वाशिंगटन बेस्ड जो ग्लोबल थिंक टैंक है स्टिम्सन सेंटर, वहां से मैंने उनको ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ऑफर किए और वो उन्होंने कंप्लीट किए और नाउ दे हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द वाशिंगटन स्टिम्सन सेंटर, ठीक है। तो जिनके अंदर एक रिसर्च का, ग्लोबल पॉलिटिक्स को, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को देखने का इंटरेस्ट है, उनके लिए हम एक डिफरेंट चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जिस स्टूडेंट के अंदर नेचुरल टैलेंट अल्लाह ने डाला है, हम उसी के तहत उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ताकि वो अपने आप को जान सके और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने के काबिल हो जाए।
3: ज़बरदस्त। तो सामईन, आपने आज का प्रोग्राम फैकल्टी आवर सुना, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि करंट ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का ताल्लुक क्या है, और IR का जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से बच्चों को उनका जो बेहतरीन सलाहियतें हैं उनके इजहार का मौका फराहम कर रहा है, और बच्चे जो IR से हैं वो किस तरह से इंडस्ट्री में जाके बहुत ज़बरदस्त अपना जो किरदार है और अपनी सलाहियतों का जो लोहा है वो मनवा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम दोबारा से डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ और खाबीदा जो डोमेन्स हैं उनके ऊपर हम ज़ेर बहस उनको लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फानी को इजाज़त और सर अब्दुलरहमान को इजाज़त। इंशाल्लाह ताला अगले फैकल्टी आवर प्रोग्राम में दोबारा से मिलते हैं। फी अमानल्लाह, सुनते रहिए FM 92.6 UCPT दुनिया।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में. अच्छा, अब पता है मजे की बात यह कि मैं कभी कभी कोशिश करूँ ना कि अच्छा मैं आप लोगों को गेस करूँ कि अच्छा आप लोग मेरी आवाज़ गेस कर लें, मुझे लगता है नहीं गेस कर सकेंगे तो इसलिए मैं खुद ही बता देती हूँ कि भाई आप लोग फातिमा अहमद को सुन रहे हैं. और अच्छा, मैंने ना अब पोल रखा था आप सबके लिए कि आप लोग गेस करें कि आज हम लोग किस पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं. और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं अब हर शो की तरह इस शो में भी एक ड्रम रोल करूँगी अपने मुंह से. अब अच्छा, मज़े की चीज़ ये कि मैं अपनी तरफ से ना लाइक यू नो आरजे भी बनने की कोशिश कर रही होती हूँ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी बनने की कोशिश कर रही होती हूँ. लेकिन खैर, हम आते हैं ड्रम रोल की तरफ. यस, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हुमायूं सईद को. ये तो हुमायूं सईद की बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 27 जुलाई 1971 और उनका लाइक उनका जो बर्थ नेम था वो हुमायूं सईद अंसारी के नाम से था. और लाइक ऑब्वियसली नाम अभी भी यही है, लेकिन ही इज़ मोस्टली नोन विद हुमायूं सईद अंसारी जो है वेरी लेस पीपल नो. और ही इज़ नॉट ओनली अ पाकिस्तानी एक्टर बट ही इज़ ऑल्सो अ प्रोड्यूसर, मतलब कि प्रोडक्शन का भी काम करते रहते हैं. और मतलब कि इन्जॉय, वो मैं हमेशा हर एक्टर या किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी को डिस्कस करूँ ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो फिर भी महदूद नहीं रहते एक चीज़ के हद तक. वो एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को और वो चाहते हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो हर फील्ड में जाके अपने आप को एक्सपीरियंस करें. तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज इन्जॉय. और मैं वही बात है कि मैं ना इतना बोलती रहती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा मैंने बहुत बोल लिया और अब आप लोगों को म्यूजिकल ब्रेक चाहिए. तो अब हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक पे और हुमायूं सईद का सबसे मशहूर जो ड्रामा आजकल चल रहा है उस ड्रामे का OST सुनेंगे और आप लोग उस जोन में आए. और फिर उसके बाद वी विल बी राइट बैक विद हुमायूं सईद.

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में फातिमा अहमद को, और हम लोग जो है आज हुमायूं सईद को डिस्कस कर रहे हैं, और वक्त जो है वो होता है ना रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है, और बातें इतनी सारी करने को हैं कि अब समझ नहीं आ रही कि अब बंदा जो है किस चीज़ पर फोकस करे, कि अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। तो इस तरह करते हैं कि मैं आपको जल्दी से होता है ना क्विक इन्फॉर्मेशन देती हूँ हुमायूं सईद के बारे में, कि बहुत मज़े मज़े की बातें हैं ऑब्वियसली करने को मेरे पास, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ सईद के एक्चुअल जो उनका उनका करियर है उससे रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। तो उनकी फिल्मोग्राफी को डिस्कस करें तो 1999 से उनका ये करियर स्टार्ट हुआ था। इंतहा मूवी आई थी इनकी, जिसमें जो समीना पीरज़ादा ने उसको डायरेक्ट किया था, उनकी डेब्यू फिल्म थी हुमायूं सईद की, और जफ़र के नाम से उन्होंने रोल अदा किया था। उसके बाद 2000 में उनकी मूवी आई नो पैसा नो प्रॉब्लम। आई रियली लाइक द नेम ऑफ दिस नेम दिस फिल्म के नो पैसा नो प्रॉब्लम, लाइक यार ये ज़िंदगी का मोटिव होना चाहिए आपका, नो पैसा नो प्रॉब्लम। उसके अलावा 2000 में उन्होंने 7 साल का गैप लिया, और फिर उसके बाद उनकी फिल्म आई मैं एक दिन लौट के आऊँगा, वेरी हैवी नेम पर आई एम श्योर इट वॉज वेरी नाइस। मैंने खैर मूवी इनकी नहीं देखी। फिर उसके बाद 2008 में उनकी फिल्म आई खुले आसमान के नीचे, फिर 2009 में उनकी आई जश्न के नाम से मूवी, और ये इनकी बॉलीवुड फिल्म थी, बॉलीवुड डेब्यू था इनका। फिर मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जिसमें उन्होंने कोच का किरदार अदा किया था, और ही बेसिकली को प्रोड्यूस्ड एज वेल। फिर उसके बाद 2015 में आफ्टर 2 ईयर्स ब्रेक इन्होंने बिन रोए, जो है इनकी बहुत मशहूर हुई थी मूवी, उन्होंने वो की। फिर उसके बाद 2015 में इनकी एक और मूवी आई जवानी फिर नहीं आनी, और जिसमें इन्होंने शेरी का रोल अदा किया था, और इन्होंने इसको को प्रोड्यूस भी किया था, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे इसके लिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर इन्होंने एक्टर इन लॉ में एक छोटा सा इन्होंने एक रोल अदा किया, स्पेशल अपीयरेंस था इनका। फिर 2017 में इन्होंने 2 मूवीज़ की, यलगार के नाम से और एक पंजाब नहीं जाऊंगी, जो है इससे पहले जो गाना भी लगा हुआ था जिस फिल्म का, तो बेसिकली मिलिटेंट एक उनका रोल था यलगार में, और यलगार नाम से ही साउंड करता है, इट्स अ वेरी हैवी एंड इट्स अ वेरी नाइस फिल्म। और जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2 आया था इनकी, इनकी फिल्म आई थी 2018 में। 2019 में प्रोजेक्ट काजी के नाम से इनकी मूवी आई, और 2019 में लव यू जट्टा जो है ये फिल्म जो है इनकी रिलीज़ हुई। टेलीविज़न में बात की जाए तो बहुत सारे ड्रामास हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जिसको मैं ज़रूर बताऊंगी, चांदनी रातें, इश्क की इंतहा, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्रामा। उसके अलावा दाम, मोहब्बत रूठ जाए तो, अना, रियासत, काफिर, दोराहा, आश्ती, इश्क जुनून दीवानगी, ये ज़िंदगी है, उड़ान, उमर दादी और घर वाले, उमर दादी और घर वाले, अच्छा सॉरी मुझे लगा वो दादी वो था ना एक पंजाबी वर्ड है वो, खैर द कैसल के नाम से इनका एक ड्रामा आया था नियत। फिर इनकी जो बिन रोए जो इनकी फिल्म आई थी उसको उन्होंने फिल्म को ड्रामा में कन्वर्ट किया था, वो इनका ऑनर हुआ था। लेडीज़ पार्क के नाम से इनका एक ड्रामा आया था, दिल लगी 2016 में इनका एक ड्रामा आया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। और उसके बाद मेरे पास तुम हो, अच्छा आई वुड लव टू डिस्कस मेरे पास तुम हो ड्रामा, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये एंड पे डिस्कस करेंगे जाते जाते मेरे पास तुम हो को, होपफुली मेरे पास टाइम में हो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को होता ना वो बता दूँ कि क्या क्या इनका सुना है। उसके अलावा इन्होंने प्रोडक्शन में भी बहुत सारा काम किया हुआ है, मेरी ज़्यादा रब्बे निशां और गुले राना, मेरे पास तुम हो, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं ड्रामास के जो इन्होंने डायरेक्ट किए हैं। और अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस की बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, इन्होंने 1996 में बेस्ट एक्टर इन अ टेल फिल्म का अवार्ड जीता, 2000 में उन्होंने बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल भी इन्होंने जीता, एक नेशनल अवार्ड बेसिकली इनको मिला था। फिर उसके बाद उन्होंने 2002 में कंगन जो इनका ड्रामा था उसमें उन्होंने बेस्ट एक्टर जीता। फिर उसके बाद ग्रेजुएट अवार्ड जिक होते हैं उसमें उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्होंने जीता। इंतहा फिल्म के लिए बेसिकली उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, कॉन्टीन्यूस वो जीते रहे। उसके बाद उन्होंने चांदनी रातें जो इनका एक ड्रामा था उसके लिए उन्होंने एक अवार्ड उन्होंने जीता। फिर उसके बाद उन्होंने बेस्ट एक्टर जो है शाहजेब के नाम से उन्होंने रोल किया था उसमें, उन्होंने 2004 में उन्होंने जो है मेहंदी इनका ड्रामा था उसमें उन्होंने अवार्ड जीता। फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूसली ही कैप्टन विनिंग 2005 से लेके 2010 तक उन्होंने कॉन्टीन्यूस जो है डिफरेंट ड्रामास के लिए उन्होंने अवार्ड्स हैं वो जीते। जूरी अवार्ड जो था वो उन्होंने जीता मैं हूँ शाहिद अफरीदी के लिए,
वही बात है कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म थी जिसमें ऑब्वियसली उन्होंने खुद उसको प्रोड्यूस भी किया था, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि नॉट ओनली ही डिड दैट फिल्म बट ही ऑल्सो वॉन अवार्ड्स फॉर इट. और फिर उसके बाद फिल्म आई है जवानी फिर नहीं आनी, उसके लिए उन्होंने कॉन्टीन्यूस जो है 3 अवार्ड्स जीते, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल और बेस्ट एक्टर रिकग्निशन अवार्ड जो है इनको मिला. और फिर पंजाब नहीं जाऊँगी उसके लिए भी इनको बेस्ट एक्टर फिल्म का अवार्ड मिला, और बिन रॉय के लिए भी उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला. तो बेसिकली उनके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं कॉन्टीन्यूसली. और उनके एक और भी ऑनर्स की बात करी की जाए जो एक हट के है, तो उनके बेस्ट एक्टर फॉर अ म्यूजिकल टेलीफिल्म थी जहर, जो यासिर अख्तर ने बेसिकली डायरेक्ट की थी, उसके लिए इनको अवार्ड मिला. फिर बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है इनको पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको उनके रिकग्निशन उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पाकिस्तानी सिनेमा के लिए. तो मैंने बस आप लोगों को वही बात है कि हमारे सईद से रिलेटेड बस ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास आप लोगों को देने के लिए. और लेसन बेसिकली यही है हमारे सईद से रिलेटेड के नो मैटर व्हाट आप यू नो कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड आप कॉन्टीन्यूस आपकी आपको लगता है ना कि कभी आपका चार्ट आपका ग्राफ कॉन्टीन्यूस सक्सेस में नहीं रहेगा, ये आप लोगों की भूल है. आप लोगों का जो चार्ट है वो बहुत खूबसूरती से कॉन्टीन्यूस अगर आप मेहनत करते हो और अपनी जान डालते हो अपने हर काम में तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो. तो आप लोगों की कभी भी जो है ना खिजा नहीं आएगी, हमेशा बहार ही रहेगी. आप सबका सुनने का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मज़ा आया आज का शो करने, लिटरली आज मुझे बहुत मज़ा आया शो करने का. और आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी और हम लोग ज़रूर किसी फिल्म या फिर किसी सिंगर को किसी आर्टिस्ट को डिस्कस करेंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे और इसी तरह से चुगल भी लगाएंगे और हम लोग किसी एक्टर की ज़िंदगी को डिस्कस भी करेंगे. फातिमा अहमद को सुनने का बहुत शुक्रिया. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Lunch 2.6.

0: सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCT की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहीं

0: के सुर और तान,
1: सुर और तान,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

अलय का मजार कसूर में वाकई है। आपके मजार पर आज तक अकीदतमंद हर साल आपकी सुफियाना शायरी की अजमत के गुनगा कर आपको खराज अकीदत पेश करते हैं। आपका उर्स 6 सफरुल मुजफ्फर को बहुत धूमधाम और पुरजोश तरीके से मनाया जाता है।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 90.

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: ट्वेंटी फोर सेवन ओनली ऑन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। WhatsApp पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में WhatsApp को रिपोर्ट करें।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: फैकल्टी आज से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन अब्बास और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज से है। मैं बात कर रहा हूं सर उमर शौर की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
3: वालेकुम सलाम बेटा, आई एम फाइन, आप बताएं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज की फैकल्टी को ज्वाइन आपने किस तरह से किया और क्या है आपका बैकग्राउंड?
3: जी मैं फिलहाल जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर प्रिंसिपल लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ।
2: माशाल्लाह।
3: रेंडरिंग माय सर्विसेज। और जहाँ तक दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक होने का ताल्लुक है तो मैंने अपना जो ये तालीमी सफर है मैं अपने आप को तालिबे इल्म ही समझता हूँ, बेशक के मैं पढ़ाने से मुंसलिक हूँ, 2008 से स्टार्ट किया।
2: 2008 से।
3: और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लाहौर की मैं पढ़ाता रहा हूँ, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। ये माजी में मैं इन जो है तालीमी इदारों से मुंसलिक रहा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज जो है वो दो डोमेन्स में है, एक फिलोसफी के अंदर है, दूसरा मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर। तो अब तकरीबन जो है मेरा टोटल जो तजर्बा है वो तकरीबन 15-16 साल का हो चुका है और 15-16 साल से मैं दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। UCP का ताल्लुक भी मेरा बहुत पुराना है, मैं यहाँ का एलुमनाई भी रहा हूँ और 2010 से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ विजिटिंग कैपेसिटी।
2: सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका UCP में पढ़ाने के दौरान?
3: UCP अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राइवेट और निजी इदारों के अंदर ये अपना एक नाम रखता है, एक मुकाम रखता है और इसमें बहुत सारे ऐसे मुस्बत पहलू हैं जिसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, खासकर फैसिलिटीज के लिहाज से, स्टूडेंट के लिहाज से। माई सेल्फ इज अ स्टूडेंट वे बैक इन 2005-08 जब मैंने MBA यहाँ से किया और उसके बाद जी और फिर जब मैंने इवन MSP अपना यहाँ से कंप्लीट किया मैनेजमेंट साइंसेस में। तो UCP अपनी जो है फैसिलिटीज और जो प्रो स्टूडेंट पॉलिसीज के स्टूडेंट बॉडी को फैसिलिटेट करने के लिहाज से ये अपने आप में एक नाम है और इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस करने में भी इसका कोई दूसरा सानी नहीं नजर आता, खास कर निजी अदारों के अंदर। और इवन अगर मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिक अदारे हैं उसके अंदर भी इनका अगर हम UCP का मुवाजना करें तो इनका तालीमी मयार जो है जो ये स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनकी ओवरऑल फैकल्टी है, जो इनकी ओवरऑल फैसिलिटीज हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर रियली अनमैच्ड। वो वाकई काबिल जिक्र है और यानी क्वालिटी एजुकेशन और प्राइस वैल्यू ऑफ मनी ये चीज मिलती है और उसका एक जो है नतीजतन हम यहाँ बैठे हुए हैं और स्टूडेंट और एक प्रोग्राम कर रहे हैं
2: जिसे
3: आप ये देखें कि आपको इवन मार्केट में भी जाएंगे तो हर तीसरा चौथा बच्चा UCP के आपको
2: नो डाउट सर
3: लोगों से मिलेगा। इसका मतलब देखें कि मार्केट पेनिट्रेशन कितनी जबरदस्त है इनकी, तो अगर क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे जो है इनके बरसरे रोजगार है और मार्केट में इनका एक माशाल्लाह नाम है।
2: सर UCP अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा भी पॉलिश करती होती है डिफरेंट स्किल्स में और डिफरेंट फैकल्टी से भी,
3: नो डाउट।
2: तो सर मेरा पहला सवाल है आपसे जो कि मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि फलसफा क्या है और उसकी तालीम क्यों जरूरी है? आपको लगता है कि फलसफे की तालीम लेना जरूरी है इस दौर में जो कि एक डिजिटल मीडिया वर्ल्ड है?
3: देखिए बेटा बात यह है कि फलसफे की तालीम नागजीर है, इट इज समथिंग विच इज इंडिस्पेंसिबल। फलसफा आपको बेसिक प्रोवाइड करता है जिंदगी की। अगर आप फलसफे को एकेडेमिक डिसिप्लिन के तौर पर अगर हम 2 मिनट के लिए समझें कि इस सब्जेक्ट को हम रख दें, जो कि आम फहम लोगों को यही लगता है जो कि अभी आपका सवाल है कि पता नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत रिडंडेंट है, बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है, आज की दुनिया में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या तालीमी ज़रूरी है? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप किसी चीज़ की ABC को ही ख़त्म कर दें तो उसकी ABC को ख़त्म किया जा सकता है? नहीं। सवाल आंसर होगा कि आपके बेसिक्स को तो नहीं ख़त्म कर सकते।
2: बिल्कुल।
3: तो जो सोच के फंडामेंटल्स हैं जो आपकी थॉट के, अगर उसमें से फलसफा नहीं होगा, उसकी बुनियाद फलसफियाना स्लूप के ऊपर नहीं जिसे कहते हैं इरेक्ट की जाएगी, तो आपकी जिंदगी आप ऐसे ही समझें कि आपकी जिंदगी एक वाइल्ड गूस चेस के मुतरादिफ होगी, यानी कि बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपकी जो एग्जिस्टेंस है, जो आपका वजूद है, वो एनिमल लेवल की एग्जिस्टेंस आपकी हो जाएगी, क्योंकि फिलोसफी एकेडेमिकली इज बीइंग ट्रीटेड एज मदर ऑफ नॉलेज। इसको उम्मुल अलूम कहा जाता है, इस सब्जेक्ट
2: उम्मुल अलूम
3: मदर ऑफ नॉलेज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए किया जाता है कि फलसफा ख्यालात, फलसफे की इब्तिदा इंसानी तजस्सुस से होती है। अब इंसानी तजस्सुस क्या आजकल खत्म हो गया?
2: सर, इसे ख्यालात का मजमुआ भी कहा जा सकता है।
3: ख्यालात का मजमुआ, आप हजारों साल पहले देख लें, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इंसान की वही है जो आज भी है। मौत का अलमिया, जिंदगी, माजी के पछतावे, मुस्तकबिल के अंदेशे, इनमें आपकी पूरी जिंदगी घिरी हुई है। इंसान, दुख, बीमारी, ट्रेजिडी, वही अलमिया जो इंसान की जिंदगी को हजारों साल से घेरे हुए, वो अलमिया इंसान का आज भी है। तो इन अलमियों का जवाब फलसफा देता है इंसान को। इंसान की जो मकसदियत है इंसान की जिंदगी की, उसको इंसान से रोशनाश कराता है, वो है फलसफे का इलम। तो फलसफे का इलम इंसान को बेसिकली अकल बालग, जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं कि मैच्योर इंसान, किसी भी आप प्रोफेशन का हिस्सा बने, अ मैच्योर पर्सन इज सपोज्ड टू बी लाइकली वेलकम्ड, ठीक है, उसको पसंद किया जाता है, लोग उसको समझते हैं कि जिसकी जो थॉट की मैच्योरिटी है, इससे वो एक माशरे में फाल करदार अदा कर सकता है। तो उसकी बेसिक बुनियाद ये है कि अगर आपने फलसफा पढ़ा हुआ है अपने इल्मी लिहाज से, आपकी सोच के अंदर एक बलूगत पाई जाती है, आप चीज़ों को हैंडल उस मैच्योरिटी से करते हैं, इसका बहुत हद तक ताल्लुक आपके एकेडमिक्स के साथ है, और उसमें फलसफे का सब्जेक्ट नागजीर है। बेशक ये फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई एकदम से पैसा कमाने का वो नहीं जरिया बता देता, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें दोबारा इस बात पर तदब्बुर करनी पड़ेगी, क्या इंसानी जिंदगी और इंसानी तालीम का सिर्फ मकसद पैसा कमाना ही है? आप किसी भी दुनिया के खित्ते में अगर ये सवाल उठाएंगे कि क्या सिर्फ तालीम और इलम का मकसद पैसा कमाना है, तो आपको एक सीरियस जवाब की सूरत में ये मिलेगा कि बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है, एक अच्छे इंसान की परवरिश और एक इंसान को माशरे में एक फाल करदार निभाना चाहिए, और उसकी बुनियाद के लिए

0: है, कहीं लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, कहीं लोग एब्जेक्ट पावर्टी का हिस्सा हैं, ठीक है, कहीं लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल रही, पीपल आर रियली टॉटरिंग फॉर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। तो ये तमाम चीजें जो हालात और वाकयात हैं, ये इंसान के अंदर एक थॉट डेवलप करती है,
1: गहरा असर मतलब,
0: और यही गहरा असर फलसफे की इब्तिदा है मेरा बेटा। यही चीजें एकेडमिकली फलसफा इन्हीं चीजों की तलाश करता है, इन्हीं सवालात, फलसफे के अंदर बहुत सारे सवालात हैं और बहुत कम जवाबात हैं।
1: जी
0: आप देखें, आप यहाँ पर बैठे हुए, इसकी हम एक तशबीह जोड़ देते हैं, हम एक अच्छी एनवायरनमेंट में बैठ के आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ,
1: बिल्कुल
0: बैठे बैठे हमारे सामने फलस्तीन और फलस्तीन की एग्जांपल है, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया गजा, वो भी बिल्कुल कंटेम्परेरी वर्ल्ड में तमाम फैसिलिटीज के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। तो यकायक जब इंसान के अंदर एक जिंदगी में उतार और चढ़ाव आता है, तो ये तमाम चीजें जो दुनिया के अंदर हमारे सामने गिर्दो नवा में मौजूद है, ये हमारे अंदर एक सोच की इब्तिदा करती है, या हमारे अंदर एक सोच पैदा करती
1: है, हम इसे कहते हैं डेवलपिंग ऑफ न्यू थिंग्स।
0: जी, और यही सोच फलसफा है, और इन सोच के जरिए से उन अद्भुत हकीकतों का, उन मुश्किल और पेचीदा मसाइल का हल तलाश करना फलसफा है। फलसफे के मैं मसाइल आपको बता भी देता हूँ क्या है। जब आपके अंदर सोच आती है तो आपको पता चलता है जो मैं इल्म पढ़ रहा हूँ उसकी बुनियाद क्या है, जो इल्म है वो ठीक भी है या नहीं, मेरी वजूद की अपनी हकीकत क्या है, और सबसे बड़ी बात जिस चीज की मैं परस्तिश करता हूँ, जिस चीज की मैं परस्तिश करता हूँ उसका अपना क्या वजूद है, क्या मुझे उसकी परस्तिश करनी भी चाहिए या नहीं, क्या वो मौजूद है या नहीं, ये तमाम सोच और ये तमाम सवाल इंसानी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। फलसफा इन्हीं चीजों की एकेडमिकली आंसर हमें देने की कोशिश करता है।
1: जी ठीक है सर, दूसरे सवाल की तरफ जानब मैं जाऊंगा कि सर आपको क्या लगता है कि फलसफा और मजहब ये दोनों मिलकर माशरे में कोई हमांगी पैदा कर सकते हैं?
0: जी ये बहुत ही आपने अच्छा और एक गहरा सवाल किया है, क्योंकि अवाम उन्नास के अंदर एक चीज पाई जाती है, खासकर हमारे माहौल के अंदर, कि शायद फलसफा आपको लादीनियत की तरफ ले जाता है, फलसफा आपको मजहब से बेगाना कर
1: देता है। सर मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो फलसफा पढ़ के एथिसिज्म की तरफ जा रहे हैं, एथिस्ट बन चुके हैं।
0: बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, ऐसा है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपने इल्म के आगे कहां पर बैरियर लगा देते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फलसफे का मकसद भी हकीकत की तलाश और जस्तजू है, मजहब का मकसद भी यही है। हाँ, दोनों की थोड़ा सा तरीक़ेकार और मेथड में फर्क है। मजहब एक हद तक अक्ल का जरूर सहारा लेता है और उसके बाद ईमान की बात करता है,
1: बेशक,
0: और उसके बाद ईमान की बात करता है। फलसफा भी अक्ल और मुशाहदे की बात करता है, लेकिन इसका टोटल ऑर्बिट अक्ल और मुशाहदे के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अक्ल और मुशाहदे की अपनी लिमिटेशंस हैं, इंसानी अक्ल और इंसानी मुशाहदे की भी अपनी लिमिटेशन है, और इस बात को भी किसी मजहबी बंदे ने हाईलाइट नहीं किया, फलसफियों ने ही हाईलाइट किया। आपकी अकल एक हद से ज्यादा चीजों को सोच नहीं सकती।
1: सर फिर क्यों लोग अपने अकल पर काबू रखते हुए मतलब ऐसे आगे वेज की तरफ चले जाते हैं जिसका,
0: मुझे ये लगता है मेरी अपनी दानस के अंदर ये बात है कि लोगों की कम इल्मी है, लोग जब
1: शौर कम है,
0: शौर कम है, और फिर दूसरी बात यह कि इंसान का एक अपना कल्बी रुझान भी होता है। अगर आपने पहले ही से कुछ चीज़ें सोच रखी हैं कि मेरा एक रुझान है लादीनियत की तरफ, तो आप वो तमाम हकायक को उन चीज़ों के साथ जोड़ेंगे जो वाकई आपको लादीन बना देगी, जो आपको एथिज्म की तरफ लेके जाएगी। मैंने आपको फिर बताया कल्बी रुझान, हकायक कुछ और होते हैं अक्सर जो खारिज में हकायक पाए जाते हैं, और एक इंसान का कल्बी रुझान भी है। इंसान के साथ अलमिया ये है कि जिस तरफ वो एक कल्बी रुझान रखता है, वो हकायक को उस अपने कल्बी रुझान के साथ जोड़ने की कोशिश करता है,
1: उसके मुताबिक डाल जाता है,
0: उसके मुताबिक। तो अगर एक बंदे का पहले ही मजहब बेजारी तबीयत है, वो मजहब को पसंद नहीं करता, तो वो सारे वो हकायक जोड़ने की कोशिश करेगा जो इससे वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा शायद मजहब नामी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती,
1: मजहब से जुदा करता
0: है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें देखने की जरूरत है। हमें एक न्यूट्रल एस्पेक्ट लेकर, हमें अपने एक मोतदिल रवैया रख के चीज़ों को समझने की जरूरत है, और फलसफा आपको बहुत हद तक वो जहन की और वो सोच की बलूगत बख्शता है, आपके अंदर वसत कल्ब पैदा करता है, जिससे आप तदब्बर, कंपोयर, जो हमारे माशरे में खासकर तहम्मुल और बुर्दबारी का बहुत फकदान पाया जाता है, हम बात कम करते हैं और झगड़ते ज्यादा, हमें गुफ्तगू का भी मयार नहीं पता कि हमें गुफ्तगू कैसे करनी है। आज के माशरे में सबसे दूसरा मुश्किल काम गुफ्तगू है, तो गुफ्तगू कैसे करनी है, गुफ्तगू के आदाब क्या है। फलसफे की एक बहुत बड़ी ब्रांच इखलाकियात है। अब मुझे बताएं अगर एक माशरा बगैर इखलाकियात के हो तो वो माशरा बिल्कुल हम उसे ये कह सकते हैं कि वो जानवरों का माशरा है। तो किस हद तक जरूरी है, क्योंकि फलसफा आपको इखलाकियात सिखाता है।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

उठ शाह हुसैन वेख लै असी बदली बैठे बेस साढ़े जिन निमाणी कूक दी सर गए विच परदेस साढ़ा हर

जंग जणू चुप चुपी ता वेख के पई आखण लोग मलंग असा खुबे गम दे खोबड़े साडे लंबे हो गए केस पाता ने बाणे सोच दे असा बुंदे रहंदे केस साडे सर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सिया बिन छाउण चीतर रुख दी साडे अंदर बांबड़ बार असा मच मचाया इश्क दा साडे लूसे आई कलू असा खुद नू भुले सावला सा हरदम जपया तू।

कसीदा हक दे बलीदा, सारे सुनाओ नारा अलीदा। झुकिया मैं डरते बनके सवाली, इज्जत मिली है जगतों निराली। पै लोग आखंड मैकू कलंदर।

जलवा आन दिखाया, बुलबुल नहर हवावा फुल भी हो गए मस्त। रोज अवल में जाम जे पीता वहदत मस्ती वाला, बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिसदे मस्त। ओ ना डरदा दोजख कोलों, ना लालच जन्नत दा।

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: Ye hunar nahi maharat hai. Ye sirf radio nahi ek nayi awaaz hai. जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत आपकी दुनिया हमारी दुनिया यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।

सुरोड़ताल सुरोड़ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6.
2: आप आजाद हैं, आजाद रहें. आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।